तवे क्या कहाते मना किया तू, क्या कहाते चा किया तू, क्या तो तेरा गी मारिए, क्या तो तेरा गी मारिए।